से दे रहे हैं, हालांकि आप नारायण है वो कलाकार जगमय प्रयोग, लेकिन याद इतिहास कर रहा है गुरु नानक सचिव पास जो गौंदे सन भाई मरदाना साहब रबाब का साथ दिए सन, तो सारा कुछ ठहर जाता है, रुक जाता है। ऐसी आवाज रस वाली और ऐसा कीर्तन और ये भी वही रीता है, कोई असी नहीं त्याग की, सीना बसीना चली आई हैं सैकड़े साल पुरानी, जिवें गुरु तेग बहादुर जी पातशाह का शब्द है, रे मन कौन गत हुए है तेरी, सतगुरु सच्चे पातशाह ने आप गायन की है, और जो बिहागड़े भी गायन की है वो भी पंजे पातशाह ने आप कृपा की है। साढ़े गुरु साहब गुरु जन उस्ताद कहते सन, मत समझना कि असी बनाई रीतां, मैं अपने गुरु को करद्या करद्या ये गुरु साहब तक कड़ी पहुंचती है कि वो रीता। सो आओ कुछ मिनट का समा लवेंगे आप जी का।

हरे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़ंदखी सर जुग जुग वेदा नाले

आरे गावन तुदनो खंड मंडल भय मंडा कर कर रखे तेरे तारे से तुदनो गावन जो तुद पावन

चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा। सब त्यावै सब त्यावै तुजी हर सचे सिरजनहारा। सब जी तुम्हारी जी तू जिया का दहकारा। हर त्यावो संतो जी सब

पड़े बो समृत सासत जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत पले जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर कर।

तुझ बिन दूजा कोई नाहे, जीए जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल, जिसनु तू जाना है सोई जन जाना, हर गुण सदही आख वखाणा, जिन हर सेव्या तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब हुए, तुद बिन दूजा अवर न कोई।

ब्रह्मा बबतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर बिशन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जचन उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी।

स्वरूपा रंक पयो राव कहे भूपा अंडज जीरज सेतज कीनी उत्पज खान बहो रच दीनी कहूं फूल राजा हवै बैठा कहूं सिमट पयो शंकर इकैठा।

0: बैन बोले बूझिया सचियार। ओ मना चोर ना बन, अगर तू चोर है ते कुत्ता है कूड़ियार है, तू सनमुख हो के गुरु दे महाराज कहते चल, नहीं ता जमा दी मार पैंदी है नाम तो बिना जी।
1: महला पंजवा।
0: पंचम गुरुदेव महाराज शहीदां दे सरताज, शांति दे पुंज गरीब निवाज।

एक आसु राखू मन माहे, सर्व रोग नानक मिट जाहे। जिस धन को चार कुंट उठता वै, सो धन हर सेवा ते पावै। जिस सुख को नित बछ मीत, सो सुख साधु संग परीत। जिस सोभा कौ करै भली करनी, सा सोभा भाज हर की सरनी। अनक उपावी रोग न जाए, रोग मिटै हर अब खद लाए। सर्ब निदान मैं हर नाम निधान, जप नानक दरगह परवान। मन प्रबुद्ध हर कै नाए, दै दिस तावत आवै ठाए। ताको बिघन न लागै कोई, जा कैर दै बसै हर सोए। कल ताती ठांडा हर नाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ। भौ बिन सह पूरन होए आस, भगत पाए आत्म प्रगास। तित घर जाए बसै अबिनासी, कहो नानक काटी जम फासी। तत विचार कहे जन साचा, जन्म मरै सो काचो काचा। आवा गवन मिटै प्रभ सेव, आप त्याग शरण गुरदेव। इउं रतन जन्म का हुए उधार, हर हर सिमर प्राण आधार। अवर उपाव न छूटन हारे, सिमरत शास्त्र वेद विचारे। हर की भगत करो मन लाए, मन बंशत नानक फल पाए। संग न चालस तेरै तना, तू क्या लपटावै मूरख मना। सोत मीत कुटंब अर बनता, इनते कहो तुम कवन सनाथा। राज रंग माया बिसुथार, इनते कहो कवन छुटकार। अस हस्ती रथ असवारी, झूठा डंफ झूठ पासारी। जिन दिए तिस बुझे ना बिगाना, नाम बिसार नानक पछताना। गुर की मत तू ले आने, भगत बिना बहु डूबे सियाने। हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चीत। चरण कमल राखू मन माहे, जन्म जन्म के किल बिख जाहे। आप जपहो अवरा नाम जपावहो, सुनत कहत रहत गत पावहो। सार भूत सत हर को नाओ, सह सुभाए नानक गुण गाओ। गुण गावत तेरी उतरस मैल, बिन सुजाए हो मैं बिख फैल। होहे अचिंत बसै सुख नाल, सास ग्रास हर नाम समाल। शाड सियानप सगली मना, साध संग पावै सच तना। हर पूंजी सांच करो व्यवहार, इहां सुख दरगै जयकार। सर्ब निरंतर एको देख, कहो नानक जाकै मस्तक लेख। एको जप एको सालाहे, एक सिमर एको मन आहे। एक सके गुण गाओ अनंत, मन तन जाप एक भगवंत। एको एक एक हर आप, पूरन पूर रहो प्रभ व्याप। अनक बिसथार एक ते पहे, एक आराद पराशत गए। मन तन अंतर एक प्रभ राता, गुर प्रसाद नानक एक जाता। श्लोक फिरत फिरत प्रभ आया, परया तौ शरणाए। नानक की प्रभ बेनती, अपनी भगती लाए। अष्टपदी जाचक जन जाचै प्रभ दान, कर कृपा देवौ हर नाम। साध जना की मांगौ तूर, पार ब्रह्म मेरी सरदा पूर। सदा सदा प्रभ के गुण गावो, सास सास प्रभ तुम्हें ते आवो। चरण कमल सिउ लागै प्रीत, भगत करो प्रभ की नित नीत। एक ओट एको आधार, नानक मंगै नाम प्रभ सार। प्रभ की दृष्ट महा सुख होए, हर रस पावै बिरला कोए। जिन चाखिया से जन त्रिपताने, पूरन पुरख नहीं डोलाने। सुभार भरे प्रेम रस रंग, उपजै चाओ साध कै संग। परे शरण आन सब त्याग, अन दिन आन अंतर प्रगाश। अन दिन लिवलाग, बड़ भागी जपया प्रभ सोए। नानक नाम रते सो।

सेवक की मनसा पूरी पही सतगुरु ते निर्मल मत लई जन को प्रभ होयो दयाल सेवक की नो सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन पाया जन्म मरण दुख भ्रम गया ऐश पुनी श्रद्धा सब पूरी रब रहया सद संग हजूरी जिसका सा तिन लिया मिलाए नानक भगती नाम समाए सो क्यों बिसरै जे काल ना पानै सो क्यों बिसरै जे किया जानै सो क्यों बिसरै जिन सब किश दिया सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया सो क्यों बिसरै जे अगन में राखै गुर प्रसाद को बिरला लाखै सो क्यों बिसरै जे बिखते काढ़ै जन्म जन्म का टूटा गांडै गुर पूरै तत एह बुझाया प्रभ अपना नानक जन तिहाया साजन संत करो एहो काम आन त्याग जपहो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपहो अवरा नाम जपावो भगत पाए तरिए संसार बिन भगती तन होसी शार सर्व कल्याण सुख निद नाम बूढ़त जात पाए विश्राम सगल दुख का होवत नास नानक नाम जपो गुण तास उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मन तन यंत्र एही सुवाओ नेत्र हो पेख दर्स सुख होए मन बिगसै साध चरण धोए भगत जना कै मन तन रंग बिरला को पावै संग एक बस्त दीजै करमया गुर प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कही न जाए नानक रहया सर्ब समाए प्रभ बख्शंद दीन दयाल भगत वशल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व घटा करत प्रतपाल आदि पुरख कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जपै सो होए पुनीत भगत पाए लावै मन हीत हम निर्गुनी यार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान सर्व बैकुंठ मुक्त मोख पाए एक निमख हर के गुण गाए अनक राज भोग बड़े आई हर के नाम की कथा मन पाई बहु भोजन कापर संगीत रसना जपती हर हर नीत भली सो करनी सो बा धनवंत हृदय बसे पूरन गुरमंत साध संग प्रभ देहु निवास सर्व सुख नानक प्रगास सलोक सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप आपन किया नानका आपे ही फिर जाप अष्टपदी जब आकार एक आशना दृष्टिता पाप पुन तब कहते होता जब धारी आपन सुन समाद तब बैर विरोध किस संग कमात जब इसका वर्ण चिहन ना जापत तब हरक सूख कहो किस है व्यापत जब आपन आप पार ब्रह्म तब मोकहां किस होवत परम आपन खेल आप वरतीजा नानक करने हार न दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुकत कहो किस कहो गनी जब एक हर अगम अपार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब सेव सकत कहो कित ठाए जब आपे ही आप अपनी ज्योत तर तब कवन निडर कवन कत डरै आपन चले तो आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख आपन आसन तह जन्म मरण कहो कहा विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा
जब नास निरंजन अगोचर अगादे, तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे। आपन आप ही अचर जा, नानक आपन रूप आप ही उपर जा। जह निर्मल पुरख पात होता, तह बिन मैल कहो क्या तोता। जह निरंजन निरंकार निर्वाण, तह कौन कौ मान कौन अभिमान। जय स्वरूप केवल जगदीश, तह शाल शिदर लगत कहो कीस। जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै, तह किसै भूख कवन त्रिपतावै। करन करावन करने हार, नानक करते का नाहे सुमार। जब अपनी शोभा आपन संग बनाई, तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई। जय सर्ब कला आपे परबीन, तह वेद कतेव कहा को चीन। जब आपन आप उरतार, तो सगन आप सगन कहा विचार। जह आपन ऊच आपन आप नेरा, तह कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा। बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद, नानक अपने गत जानहु आप। जह अशल अशेद अभेद समाया, ऊहा किसै व्यापत माया। आपस को आपे आदेश, तेहो गुण का नाही परवेश। जह एक है एक एक भगवंता, तह कौन अचिंत किस लागे चिंता। जह आपन आप पतियारा, तह कौन कसै कौन सुनने हारा। बहु बेअंत ऊच के ऊचा, नानक आपस को आपे पाहुचा। जह आप्रचयो परपंच अकार, तेहु गुण में कीनो विस्थार। पाप पुन तै पई कहावत, को नरक को सुर्ग बंशावत। आल जाल माया जंजाल, हो मैं मोह परम पै पार। दुख सुख मान अपमान, अनक प्रकार कियो बखियान। आपन खेल आप कर देखै, खेल संकोचै तौ नानक एकै। जह अवगत भगत तह आप, जह पसर पसार संत परताप। दोहो पाक का आपे तनी, उनकी शोभा उनहू बनी। आपे कौतुक करै आनंद जोज, आपे रस भोगन निरजोग। जिस भावै तिस आपन नाय लावै, जिस भावै तिस खेल खिलावै। बेसुमार अथा अगंत अतुल, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै। सलोक जी जंत के ठाकुरा, आपे वर्तन हार। नानक एको पसरिया, दूजा कह दृष्टार। अष्टपदी आप कथै आप सुनने हार, आपे एको आप विस्थार। जा तिस भावै तां श्रिष्ट उपाय, आपने भाणै लए समाए। तुम ते भिन्न नहीं किश होए, आपन सूत सब जगत परोए। जा कौ प्रभ जियो आप बुझाए, सच नाम सोई जन पाए। सो समदर्शी तत का बेता, नानक सगल श्रिष्ट का जेता। जी जंत्र सब तक है हाथ, दीन दयाल अनाथ को नाथ। जिस रख है तिस कोई न मारे, सो मुआ जिस मनो बिसारे। तिस तज अवर कहा को जाए, सब सिर एक निरंजन राय। जी की जुगत जाके सब हाथ, अंतर बाहर जानो साथ। गुण निधान बेअंत अपार, नानक दास सदा बलहार। पूरन पूर रहे दयाल, सब ऊपर होवत कृपाल। अपने करतब जाने आप, अंतर जामे रहो व्याप। प्रतपाल जीयन बौ पांत, जो जो रचियो सो तिसै त्यात। जिस भावै तिस लय मिलाए, भगत करै हर के गुण गाए। मन अंतर विश्वास कर मान्या, करणहार नानक एक जान्या। जन लागा हर एक नाए, तिस की आस न बिरथी जाए। सेवक कौ सेवा बन आई, हुक्म बूझ परम पद पाई।
इस ते ऊपर नहीं विचार, जाके मन बसया निरंकार, बंधन तोर भय निर्वैर, अंधन पूजे गुर के पैर। ए लोक सुखिए पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले, साध संग मेल करो आनंद, गुण गावो प्रभ परमानंद, राम नाम तत करो विचार, दुर्लभ देखा करो उधार, अमृत बचन हर के गुण गाओ, प्राण तरन का यह सुहाओ, आठ पहर प्रापेखो नेरा, मिटे अज्ञान बिन सय अंधेरा, सुन उपदेश हृदय बसावो, मन इच्छे नानक फल पावो, हलत पलत देव दोएले हो सवार, राम नाम अंतर उरतार, पूरे गुर की पूरी दिखिया, जिस मन बसै तिस साच परिखिया, मन तन नाम जपो लिव लाए, दुख दर्द मन ते पौ जाए, सच वापार करो वापारी, दरगह निबह खेप तुम्हारी, एक घाट एक रखो मन माहे, नानक बहुर न आवे जाए, तिस ते दूर कहा को जाए, उबरे राखन हार ते आए, निरपौ जपै सगल पौ मिटै, प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै, जिस प्रभ राखै तिस नाही दुख, नाम जपत मन होवत सुख, चिंता जाए मिटै अहंकार, किस जन को कोई न पहुचन हार, सर ऊपर ठाडा गुर सूरा, नानक ताके कारज पूरा, मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट, दर्शन पेखत उदरत सृष्ट, चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप, धन सेवा सेवक परवान, अंतर जामे पुरख प्रधान, जिस मन बसै सो तिन हाल, ताके निकट न आवत काल, अमर पाए अमरा पद पाया, साध संग नानक हर त्याया। श्लोक

सब कै मध सगल ते उदास सुंदर चतुर तत का बेता समदर्शी एक दृष्टिता ए फाल।

तिस जन कै मुख पहने, गुरु नानक नाम बचन मन सुने। एहो निधान जपै मन कोए, सब जुग में ताकी गत होए। गुण गोबिंद नाम तुन बाणी, सिमरत शास्त्र वेद बखाणी। सगल मतांत केवल हर नाम, गोबिंद भगत कै मन बिसराम। कोट अपराध साध संग मिटाए, संत कृपा ते जम ते छुटाए। जाकै मस्तक कर्म प्रभ पाए, साध सरण नानक ते आए।

कथना कथि नया वैतूट, कथ कथ कथि कोटि कोट कोट, दे दा दे लै दे थक पाहे, जुगा जुग

जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुट्टे संसार, जिस हाथ जोर कर वे कैसोए, नानक उत्तम नीच न कोए, राती रुती तिथि वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिन के नाम अनेक अनंत, करमी करमी हुए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथै सोहन पंच प्रवार, नदरी कर्म पवै निशान, कच पकाई उत्तै पाए, नानक गया जापै जाए, धर्म खंड का इहो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म, केते पवन पाणी वैसंतर, केते कान महेश, केते बरमे काढ़त घड़िय है, रूप रंग के वेश, केतिया करम भूमि मेर केते, केते धूप देश, केते इंद चंद सूर केते, केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्धनाथ के

पात नरिंद कितिया सुरती सेव किते नानक अंतनांत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथै नाद विनोद कोड आनंद शर्म खंड की बाणी रूप तिथै काढ़त घड़िए बहुत अनूप ताकिया गल्ला कथिया न जाहि जेकू कह पिछे पुछताए तिथै घड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथै घड़िए सुरां सिद्धां की शुद्ध कर्म खंड की बाणी जोर तिथै होर न कोई होर तिथै जोध महाबल सूर तिन मह राम रहा भरपूर तिथै सीतो सीता महिमा माहे ताके रूप न कथने जाहे ना उह मरह न ठगे जाहे जिन कै राम वसै मन माहे तिथै भगत वसै के लो करह आनंद सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथै खंड मंडल वर भंड जेको कथै तंत नंत तिथै लो लो आकार जिव जिव हुकुम तिवै तिवकार वेखै विकसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत पहारा धीर सुनियार अहरन मत वेद हथियार भौख लागन तपताऊ भांडा भाव अमृत ठाल घड़ी।

मुख उजले केती छुट्टी नाल जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जाप श्री मुख वाक पातशाही दसवीं छपै चंत्व प्रसाद। चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहन जे रूप रंग अर रेख भे को कह न सकत के। अचल मूरत अनुभव प्रकाशम तोज कही जय। कोट इंद्र इंद्रान साहि साहान गनी जय। त्रिपवन महीप सुर नर सुर नेत नेत बन त्रिन कहत। त्वय सर्व नाम कथय कवन कर्म नाम बरनत सुमत। भुजंग प्रया छंद नमस्तंग काले नमस्तंग कृपाले नमस्तंग रूपे नमस्तंग अनूपे नमस्तंग भेखे नमस्तंग लेखे नमस्तंग काये नमस्तंग अजाये नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अपंजे नमस्तंग नामे नमस्तंग ठामे नमस्तंग अकर्मंग नमस्तंग अतर्मंग नमस्तंग अनामंग नमस्तंग अतामंग नमस्तंग अजीते नमस्तंग अपीते नमस्तंग बाहे नमस्तंग टाहे नमस्तंग नीले नमस्तंग नादे नमस्तंग छेदे नमस्तंग गादे नमस्तंग गंजे नमस्तंग पंजे नमस्तंग उदारे नमस्तंग पारे नमस्तंग सुवेकय नमस्तंग निकय नमस्तंग भूते नमस्तंग जुपे नमस्तंग निर्कर्मे नमस्तंग निर्परमे नमस्तंग निर्देशे नमस्तंग निर्पेशे नमस्तंग निर्नामे नमस्तंग निर्कामे नमस्तंग निर्धाते नमस्तंग निर्गाते नमस्तंग निर्धूते नमस्तंग भूते नमस्तंग लोके नमस्तंग शोके नमस्तंग निर्तापे नमस्तंग थापे नमस्तंग त्रिमाने नमस्तंग निदाने नमस्तंग गाहे नमस्तंग बाहे नमस्तंग त्रिवर्गे नमस्तंग सर्गे नमस्तंग प्रभोगे नमस्तंग सुजोगे नमस्तंग रंगे नमस्तंग पंगे नमस्तंग गम्ये नमस्तश्रम्ये नमस्तंग जलाश्रे नमस्तंग निराश्रे नमस्तंग जाते नमस्तंग पाते नमस्तंग मजबे नमस्तस्तजबे अदेशंग अदेशे नमस्तंग अपेशे नमस्तंग निर्धामे नमस्तंग निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वदयाले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभूपे नमो सर्वखापे नमो सर्वथापे नमो सर्वकाले नमो सर्वपाले नमस्तस्तदेवे नमस्तंग अपेवे नमस्तंग जनमे नमस्तंग सुबनमे नमो सर्वगौणे नमो सर्वपौणे नमो सर्वरंगे नमो सर्वपंगे नमो काल काले नमस्तस्दयाले नमस्तंग वर्णे नमस्तंग मरणे नमस्तंग जरारंग नमस्तंग कृतारंग नमो सर्वतंदे नमो सत्तवंदे नमस्तंग निर्साके नमस्तंग निर्वाके नमस्तंग रहिमे नमस्तंग करिमे नमस्तंग अनंते नमस्तंग महंते नमस्तस्तरागे नमस्तंग सुहागे नमो सर्वशोकंग नमो सर्वपोकंग नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्वदयाले नमो सर्वपाले चाचरी चंत्व प्रसाद। अरूप है अनूप है अजू है अपू है अलेख है अपेक है अनाम है अकाम है अदेह है अपे है अजीत है अपीत है त्रिमान है निदान है त्रिवर्ग है सर्ग है अनिल है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म है अवर्ण है अपूत है अपर्ण है अगंज है अपंज है अचूज है अचंज है अमीक है रफीक है अतंध है अबंध है निर्भूत।

अछूत है, अलोक है, अशोक है, अकर्म है, अपर्म है, अजीत है, अपीत है, अबाह है, अगाह है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है, भुजंग प्रयाचंद, नमो सर्वमान्य समस्ती निदाने, नमो देव देवे अपेखी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व पौणे, अनंगी अनाते नृसंगी परमाते, नमो पान पाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो नृत्य नृत्य, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो बाद बादे, अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे, परपंगी परमाते समस्ती बेपूते, कलंकंग बिनाने कलंकी स्वरूपे, नमो राज राजेश्वरं परम रूपे, नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे, नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे, नमो शस्त्रपाणि, नमो वस्त्रमाणि, नमो परम ज्ञाता, नमो की स्वरूपे, नमो राज राजेश्वरं परम रूपे, नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे, नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे, नमो शस्त्रपाणि, नमो वस्त्रमाणि, नमो परम ज्ञाता, नमो लोकमाता अपेक्षीय परमी अपोगीय भुगते, नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते, नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे, नमो प्रेत अप्रेते वेषु धर्मे, नमो रोग हर्ता, नमो राग रूपे, नमो साहसांग, नमो पूपूपे, नमो दान दाने, नमो मान माने, नमो रोग रोगे, नमस्तंग स्नान, नमो मंत्र मंत्रं, नमो जंत्र जंत्रं, नमो इष्ट इष्टे, नमो तंत्र तंत्रं, सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणाशी अनुपे अरूपे समस्त निवासी, सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्ध कर्ता, अदो उर्ध अर्धं अगंग ओग हर्ता, परम परम परमेश्वरं प्रोचपालं, सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं, अचेति अपेति अनामंग कामं, समस्तो पराची समस्तस्ततामं, तेरा जोर्चा चरी छंद, जले हैं तले हैं, अपीत हैं, अपे हैं, प्रभु हैं, अजू हैं, आदेश हैं, अपेश हैं, भुजंग

छन अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूप नमो सर्वमान्य समस्ति निधाने नमस्तुंग निर्णाते नमस्तुंग परमाते नमस्तुंग गंजे नमस्तुंग पंजे नमस्तुंग काले नमस्तुंग पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो महामाहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोखे नमो शोक शोके नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो परम तानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व जंत्रंग नमो सर्व दृश्यंग नमो सर्व कृष्णंग नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अकीजे अपीजे समस्तं प्रसिज्जे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणाशी सदा सर्वदा हृदि सिद्धं निवासी चर्पट छन्त्व प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अकल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अकल धर्म लख कर्मं स्वर्वंग दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुक्ता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुआल संतो प्रसाद आद रूपनाद मूरत जौन पुरख पार सर्वमान त्रिमान देव पेवाद उदार सर्वपालक सर्वकालक सर्वकोपन काल जत्र चतर विराज ही अवतूत रूप रिसाल नाम ठाम न जात जाक रूप रंग न रेख आद पुरख उदार मूरत जौन आद अशेख देश और न पेश जाकर रूप रेख न राग जत्र तत्र दिशा विशा हुए फैलो अनुराग नाम काम हीन पेखत ताम हूँ नह जाहि सर्व मान सर्वत्र मान सदय मान तताहि एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेल अनंत को फिर एक दे भेव न जाने जे भेद और कतेब रूप रंग न जात पास हो जानी के जेब तात मात न जा जाकर जन्म मरण बहीन चक्र बकर फिरे चतर चक मान ही पुरती लोक चौदह के बिखै जग जापी जे जाप आद देवन आद मूरत थाप्यो सबै जे थाप परम रूप नीत मूरत पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रच्यो सोयम भव गर्दन भंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश धर्म धाम सो परम रहत अभूत लख अपेश अंग राग न रंग जा कह जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुख दाय काम आप रूप अमीक अनुस्त तेक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप असूत अंगहीन भंग नाथ मेक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेख सर्व शास्त्र न जा नहीं जे रूप रंग अरेक परम वेद पुराण जा कह नित भक्त नित कोट सिमृत प्राण शास्त्र नया वही वह चित मद पार चंत्व प्रसाद गुणगन उदार मह माया पार आसन अपंग उपमा अनंग अनुपव प्रकाश निस्दिन अनास आजान बाहु साहन साहु राजान राज पानन पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनपूत अंग आभा अपंग गत मित पार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निर्भय निकाम अद्भुत प्रचंड मितगत अखंड आलस्य कर्म आदृश्य धर्म सर्वा प्रणाढ्य अंडन बाढ्य चाचरी चंत्व प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निर्णामे अकामे पुजंग प्रयाचंद चतर चक्र कर्ता चतर चक्र हर्ता चतर चक्र दानी चतर चक्र जानी चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मान्य चतर चक्र दान्य चाचरी छंद न सत्रह न मित्रह न परमंग न पित्रह न कर्मंग न काय अजन्मंग अजाय न चित्रह न मित्रह परे है पवित्र प्रथिसय अधिशय अदृश्य कृशय भगवती चंद्व प्रसाद कथते क्या चिज देशय क्या भिज पेशय क्या गंज कर्मय क्या भंज भरमय क्या भिज लुकै क्या दित सुकै के अवतूत वर्णय के विभूत करणय के राजंग प्रभाह के धर्मंग तुझा है के आशोक वर्णय के सर्वा अपरणय के जगतंग कृति है के छत्रंग छत्री है के वर्मंग स्वरूप है के अनु

के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र दिश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान्य है के सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र ताप्य है के सर्वत्र पालन है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वं कलिम है के परमं सहिम है के अकल आलम है के साहिब कलाम है के हुस्नल वजू है तमाम रजू है हमें सुलसलाम है सलीकत मुदाम है गनीमुल शिकस्त है गरीबुल परस्त है बिलंदुल मकान है जमीनुल जमान है तमीजुल तमाम है रुजुअल निदान है हरीफुल अजीम है रजायक यकीन है अनिकुल तरंग है अभेद है अपंग है अजीजुल निवाज है गनीमुल खिराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रभा है सुजुक्त सुधा है सदैवं स्वरूप है अपेदी अनूप है समस्तोपराज है सदा सर्वसाज है समस्तुल सलाम है सदैवल अकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओअंगाद रूप है अनाद स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाम्य त्रिवर्गं त्रिवाद्ये अगंजे अगाधे शुभं सर्वभागे सुसर्व अनुरागे त्रिपुवत स्वरूप है अचिज है अछूत है के नरकं प्रणास है पृथ्वल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैवं सदा है विभुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है निरुक्त सदा है विभुक्त प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है चाचरी छंद अपंग है अनंग है अपेक है अलेख है अपर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अवय है भूत है अतूत है अनाश है उदास है अतंध है अबंध है अपगत है विरक्त है अनाश है प्रकाश है निचिंत है सुनित है अलिख है अधिक है अलिख है अपेक है अटा है अगा है असंभ है अगम्भ है अनिल है अनाद है अनित्य है सुनित है आजात है आजाद है चरपट छंत्व प्रसाद सर्वंगहंता सर्वंगंता सर्वंख्याता सर्वंज्ञाता सर्वंगहर्ता सर्वंगकर्ता सर्वंगप्राणं सर्वंगत्राणं सर्वंगकर्मं सर्वंगकर्मं सर्वंगयुक्ता सर्वंगमुक्ता रसावल चंत्व प्रसाद नमो नर्क नास्ते सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्मं परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाम्ये निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात निरसाकं शरीक है अमितो अमीक है सदैवं प्रभा है अजय है अजा है भगवती चंत्व प्रसाद कि जाहर जहूर है कि हाजर हजूर है हमें सुल सलाम है समस्तुल कलाम है कि साहिब दिमाग है कि हुस्नल चिराग है कि कामल करीम है कि राजक रहीम है कि रोजी देहांद है कि राजक रहिंद है करीमुल कमाल है कि हुस्नल जमाल है गनीमुल खिराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल सिकन है हिरासुल फिकन है कलंकं प्रनाश है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजायक रहीम है समस्तुल जुबा है के साहिब किरा है के नरकं प्रनाश है बहसुल निवास है के सर्वल गवन है हमेशुल रवन है तमाम उल्तमीज है समस्तुल अजीज है परम परमीश है समस्तुल अदीश है अदिशुल अलेख है हमेशुल अपेक है जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है के जुरत जमाल है के अचलंग प्रकाश है के मितो सुभाष है के अजब स्वरूप है के मितो विभूत है कि अमितो पसा है कि आत्म प्रभा है कि अचलंग अनंग है कि मितो अपंग है मत पार चंत्व प्रसाद मुनमन प्रणाम गुनगन मुदाम अरबर अगंज हर नर परपंज अनगन प्रणाम मुनमन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड वनपव अनास मुनमन प्रकाश गुनगन प्रणाम जल तल मुदाम अनछिज अंग आसन अपंग उपमा पार गतमित उदार जल थल अमंड दिस्विश अपंड जल थल महंत दिस्विश बेअंत अनुभव अनास त्रितर तुरास आजन बाहु एक सदाहु ओंकाराद कथनी अनाद खलखंड के आल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनछिज गात आजिज न बात अनचंज गात अनरंज बात अनटुट भंडार अनडट अपार आडीट धर्म अत टीठ कर्म अनवरण अनंत दाता महंत हर बोल मना चंतुआ प्रसाद करुणालय है अरकालय

है, कल खंडन है, महमंडन है, जगतेश्वर है, परमेश्वर है, कल कारण है, सर्ववारण है, तृत के तरण है, जग के कर्ण है, मन मान्य है, जग जान्य है, सर्वंग पर है, सर्वंकर है, सर्वपास्य है, सर्वनाश्य है, करुणा कर है, विश्वंपर है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है, ब्रह्मंडस है, कलखंडस है, परते पर है, करुणा कर है, अजपा जप है, अतपा थप है, कृता कृत्य है, मृता मृत्य है, मृता मृत्य है, करुणा कृत्य है, अकृता कृत्य है, धरणी तृत्य है, मितेश्वर है, परमेश्वर है, अकृता कृत्य है, मृता मृत्य है, अजबा कृत्य है, मृता मृत्य है, निर्णायक है, कलकायक है, विश्वंपर है, कुरुणालय है, निर्भनायक है, सर्वपायक है, पवभंजन है, अरगंजन है, रिपतापन है, जप जापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ता कर है, हरता हर है, परमात्म है, सर्वात्म है, आत्म बस है, जस के जस है, भुजंग प्रया चंद, नमो सूर्य सूर्ये, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो रासं तामसं शांत रूपे, नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे, नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो पूज पूजे, नमो पान पाने, नमो कलय कर्ता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे, अनादंग विभूते, कलंकार रूपे, अलंकार अलंके, नमो वास आसे, नमो बांक बंके, अपंगी स्वरूपे, अनंगी अनामे, त्रिपंगी त्रिकाले, अनंगी अकामे, एक अचरी चांद, अजय अलय अभय अभय अपू अजु अनास अकाश अकंज पंज लख पख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथि प्रमाथे अजो नियमो निनरागि नरंगे नरूपे नरेखे अकर्मंग परमंग अगंजे अलेखे भुजंग प्रया चंद, नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे, अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे, निरकामंग विपूते समस्तुल स्वरूपे, कुकर्मंग प्रणासी सुधर्मंग विपूते, सदा सचदानंद सत्रं प्रणासी, करिमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी, अजाय विपूते गजाय विगनी में, हरियं करियं करिमुल रही में, चतर चक्रवर्ती चतर चक्र पुगते, सुवयां पव सुभं सर्वदा सर्वजुगते, दुका

तिसही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सुवारी। शिवकण को सब गुण सुख दियो, सत्रन को फल मुँह बद कियो। काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पहचाने, कट कट के पट पट की जाने। जब उदकर्क करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जब आकर्क करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन सिर सब तारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब हीते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद नील अनाद असंभ। ताका मूड़ो चारत भेदा, जाको भेव न पावत भेदा। ताको करपाहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत न पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती। तुमरा लखा न जाय पसारा, के विद सजा प्रथम संसारा। एक कै रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कहि पूपा। अंडज जेरज से तज कीनी, उत्पुज कान बाहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा हवे बैठा, कहूँ सिमट भय शंकर कैठा। सिगरी सेठ दिखाए चंपव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं पव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखो बार सिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुझ तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुख तहवे मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते है, ताके काल निकट नह है। रच्छा हुए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट डरै तत्काला। कृपा दृष्टन जाहे निहरे हो, ताके ताप तनक मैं हरे हो। रिद्ध सिद्ध कर्म सब हुई, दुष्ट चाच वसकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल पास ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारु कहा, दारिद दुष्ट दुख तेरा। कड़के तुम्हें शरण तिहारी, आप हाथ दै लिहो बारी। सर्व ठौर मोह हो सहाई, दुष्ट दुख ते लिहो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण शुभ राता। किल भिक सकल देह को हरता, दुष्ट दुखिन को छह करता। श्री अस्तु जप भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन वांछित फल पावै सोई, दुख न तिसै व्यापत कोई। अड़िल सुने गुंग जो आए, सुरस न पावई। सुने मूढ़ चित लाए, चतुरता आवई। दुख दर्द भौ निकट न तिन नर के रहै। हो जो या की एक बार, चौपाई को कहे चौपाई। संबत सत्रह सहस पनि जय, अर्ध सहस पुन तीन कही जय।

तेक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सब भेद कह हम एक न जान्यो। श्री सुपान कृपा तुमरी कारु मैं न कहूँ सब तुहे बखान्यो।

ते जानिया बाबा जिसू दे सोई जन पावै पावै ता सो जन दे जिसनू होर क्या करे वेचारिया एक भरम भूले फिर है दह दिशक नाम लाग सुआरिया गुर प्रसादी मन भया निर्मल जिन्ना भाणा पावे कह नानक जिस दे प्यारे सोई जन पावे आवो संत प्यारो कथ की करह कहानी करह कहानी कथ केरी कित द्वारे पाइए तन मन धन सब सौंप गुर को हुक्म ने पाइए हुक्म ने हो गुरु केरा गावो सच्ची बाणी कह नानक सुनो संतो कथियो अकथ कहानी ए मन चंचला चतुराई किने न पाया चतुराई न पाया किने तू सुन मन मेरिया ए माया मोहनी जिने त भरम भुलाया माया ता मोहनी तिने कीती जिन ठगौली पाइया कुर्बान कीता तिसै विटहु जिन मोह मीठा लाया कह नानक मन चंचल चतुराई किने न पाया ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले एहो कुटंब तू जे देखदा चलै नाही तेरे नाले साथ तेरे चलै नाही तिस नाल क्यों चितलाई है ऐसा काम मूले न कीचै जितंत पछुताई है सतगुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरे नाले कह नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले अगम

क्या खू आख वखाणे आखै ता वेखै सब तू है जिन जग तू पाया कह नानक तू सदा गम है तिरंत न पाया सुर नर मुंजन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया जी जन सब तुद पाए वेख परसने आया लभ लोभ अहंकार चुका सतगुरु भला पाया कह नानक जिसनु आप टुटा तिन अमृत गुर ते पाया भगता की चाल निराली चाला निराली भगता हकीरी बिकम मार्ग चलना लभ लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत नाही बोलना खन्ने हो तिखी वाल हो निकीत मार्ग जाना गुर प्रसादी जिनी आप तजिया हर वासना सुमानी कह नानक चाल भगता जुग हो जुग निराली

गुर प्रसादी बुझिया ता चलत हुआ चलत नदरी आया कह नानक सृष्ट का मूल रचिया जोत राखी ता तू जग में आया मन चाओ भया प्रभ आगम सुनिया हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनिया हर गाओ मंगल नित सखी सोग दुख ना व्यापे गुर चरण लागे दिन सुभागे अपना फिर जापे अनहत

आए कह क्या तुझ कर्म कमाया कि कर्म कमाया तुझ शरीर राजा तू जग मह आया जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन न वसाया गुर प्रसादी हर मन वसिया पूर्व लिखिया पाया कह नानक यो शरीर परवान हुआ जिन सतगुरु से चित लाया हे नेत्र हो मेरे हो हर तुम है ज्योत तरी हर बिन अवर न देखो कोई हर बिन अवर न देखो कोई नदरी हर निहालिया यो वे संसार तुम देख दे वर का रूप है हर रूप नदरी आया गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा हर कह हर बिन अवर न कोई कह नानके नितरंद से सतगुर मिलया दिव दृष्ट होई ए श्रवण हो मेरे हो साचै सुनने नो पठाए साचै सुनने नो पठाए शरीर लाए सुनहु सतबाणी जित सुनी मन तन हरिया हुआ रसना रस समानी सचल कविडानी ताकि गत कही न जाए कह नानक अमृत नाम सुनहु पवित्र हो साचै सुनने नो पठाए हर जियो गुफांदर रख कै वाजा पवन बजाया बजाया वाजा पौन नौ द्वारे प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया गुरुद्वारे लाए भावनीक न दसवां द्वार दिखाया तह अनेक रूप नव नव निध तिस दांत न जाई पाया कह नानक हर प्यारे जियो गुफांदर रख कै वाजा पवन बजाया एहु साचा सोहिला साचै कर गावहु गावहु ता सोहिला कर साचै जिथै सुधा सच त्यावहे सचो त्यावहे जात दुपावहे गुरमुख जिना बुझावहे एहु सत सबना का खसम है जिस बख्शे सो जन पावहे कह

सच्चे तेरे खंड, सच्चे ब्रह्मांड, सच्चे तेरे लो सच्चे आकार, सच्चे तेरे करणे सर्व विचार, सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान, सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फुरमान, सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान, सच्चे तुदा खैलक करोड़, सच्चे सप्तान, सच्चे सब जोर, सच्ची तेरी सिफत, सच्ची सलाह, सच्ची तेरी कुदरत, सच्चे पातशाह, नानक सच तहन सच, जो मर जमे सो कच निकच महला पहला।

पहवे सिद्ध बुद्ध सुरनाथ पहवे चाराणी आकाश पहवे जोध महाबल सूर पहवे चावे चावे पूर सगलिया पहो लिखिया सिरलेख नानक निरपहो निरंकार सच एक।

नचाओ। सिखी सिख्या गुर विचार, नदरी कर्म लंघाए पार। कोलू चरखा चक्की चक, हल वरोले बहुत अनंत।

0: खाई सिर छाई पाई मूर्ख खंदे पत गवाई बिन लावे किछ खाए न पाई रह बेबाणी मणि मसाणी अंध न जाने पछताणी
1: सतगुर बेटे सो सुख पाए घर का नाम मन वसाए नानक नदर करे सपाए आस अंधे से तेने केवल हो मैं शब्द जुलाई पौड़ी पग तेरे मन पाउंदी।

गलमाला तिलक लाटंग दो धोती वस्त्र पाटंग जय जानस ब्रह्मं करमं सब हो कुट निश्चो करमं कहो नानक ने चो त्यावै बिन सतगुर बाट।

मथे टिका तेड़ धोती कखाई हथुर जगत का साई नई नील बसर पैर होए प्रवान मले धान ले पूजे पुराण अपाख्या का कुठा बकरा खाना।

से रगरों में चुप पी कर जाए प्रभा नहीं किसे केरी बाज सच्ची न दरवाटे ऊपर खर्च मंगा

बेनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अणहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

सत्संग जी, बोलो जी। वाहेगुरु वाहेगुरु, एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी साहेब आदि भगवती पाशे दस हुई, प्रथम भगवती समर कहे गुरु नानक लई त्याय। हरि अंकित गुर ते अमरदास रामदास हुए सहाय, अर्जुन हर गोबिंद नु सिमर श्री हर आए। श्री हर कृष्ण त्याग से सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमर कर्ण उन दया वहता है, सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हुए सहाय, दसम पातशाह के पुत्र आत्मक स्वरूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब ने पारदार दस अंतर के घर से बोलो जी। वाहे गरीब रवाज आप जी दे पांच प्यारे, चार साहबजादे चार ही मुक्त हटिया जपिया जपिया जिन्हें नाम जपिया मन चखिया दही जलाई के वाही देख डेढ़ किया तेना प्यार सत्यार की कमाई दते अंदर के बोलो जी। वाहेगुरु जिन्ना सिंगा सिंगनिया धर्म ये सही दिते बद बंद कटवाए, कोपड़िया लवाइया चरखड़िया की चल आर्य न चराए गए, गुरुद्वारे सेवा से कुर्बानियां कितिया धर्म ने आर्य से किसी दिखे सर सत्संग निभाए, तेना की कमाई दते अंदर के बोलो जी। वाहेगुरु पंजा तख्त सतगुरु द्वारा दते अंदर के बोलो जी। वाहेगुरु प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे नाम चेता है। जित आवन का सर सुख हो है, जहां जहां गुरु खालसा जी साहब का रचा आए, देख देख की फतेह ब्रद की पैश पंथ की जी श्री साहब जी से आए। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। वाहेगुरु सिखा सिखी दान केस दान रैत दान विवेक दान साह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब दर्शन स्नान क्योंकि चंडे बुंगे जुग जुग अटल धर्म क्या जयकार बोलो जी। वाहेगुरु सिखा का मन नहीं मैं मत दूजी मत पत के रखे आप वाहेगुरु गुरु की विवाह पंधे सदस्य आज तार जी गुरुद्वारा ननकाना साहब पंजा साहब से होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हें तो आपके पंथ को छोड़िया गया मेरे दर्शन की दार से संभाल दादा अपने खालसा जी ने बख्शो हे रोटिया जी ओट गुरु रियासरा दे आसरे गुरु धन धन गुरु ग्रंथ तार जी दोए कर जोड़ करो अरदास उपारे थाने रास हे गिरी महाराज जी आपके चरण कामना जरदास तार जी आपने बख्शिश की है अमृत वेले प्रकाशमान हुए संतों दर्शन दर्द देख निहाल तार जी बेहद बाणिया के पाठ एज में रागी सिंह ने आपके चरण दासा की वार्ता की, कितने विद्वान भीर ने अज हुक्मनामे की कथा तैयार की, कृपा करो हुईया भुला चुका नहीं माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी सोध के सच का प्रवान करो बाणी का भाव सारिया संगत हृदय कृपालता करो जी। अगो तो शोध पितर बाणी चारी बार बुद्धि बख्शित करो इमो आज इस खुशी आप दख्शिया दाता पितर कड़ाप शादी देगा तैयार कर खाते दतार आप जी भोग लाओ शीत प्रसाद सात संगत की रचना लायक होवे जो जी सके स्वास स्वास आप जी का पितर नाम जप बख्शिश करो दतार दुखा कलेशा रोगों का नाश करो सुखा का प्रकाश करो देश देर का बख्शिश करो जी। विवाज आप बख्शिया दाता जो नगर तुर सारे प्रवान करनी लतार आपके चरणों सेवा कर रहे सारे टहरिया सिंगा सिंगणिया तंदुरुस्ती बख्शो जाटिकला बख्शो अते सदा ही इसे तरह अपने चरणों सेवा की भान बखने की वालता करो। गरीब विवाज कृपा करो अमृत वेले तो लैके दाते आई सात संगतं जी दत प्रवान करो घड़िया लिखे लाओ संगतों का दत से तिर फुर भेटा प्रवान शुभकामना पूर्ण करो जी। गुरु गरीब विवाज कृपा करो दतार खास संबंध में सिख कौन एक दाल स्वाग प्यार की बख्शी करके सत रोज दाल बख्शो चैनल न जोड़ो गुरबाणी का प्यार बख्शी कर देता हार मैदान जवान फतेह बख्शिया की वार्ता करो जी। गुरु जी विवाह कृपा करो दूर दुराधे कान बैठिया लाइव संगीत श्रवण करिए सारे संगतान की हाल की प्रवान करो घड़िया लेके लाओ तो तारा आपने बख्शी की संगत को तो बख्शे संगत आपके चैनल धनबाद करते हैं शुक्रिया अदा करते हैं बेहद माया ऑनलाइन गुरु घर गुरु घर सेवा संगत संगत माया भेटा कर रही चैनल प्रवान करो बख्शिया साहब दमाइया सफल करो कार्यवादार सब संगत शुभकामना पूरी करो जी। दाल कृपा करो गरीब नवाज मेरा तो करो गिण बोलिया साहब के जान का किसी दाल बख्श करो तार जियो सेवा प्रवान करो भुला चुका माफी बख्शो वेदर हुक्मनामी बख्शिश करके ब्रह्म लड़ीवार सियाज पाठ करने वास्ते आज्ञा बख्शो रेंदे कार सवार के चैनल धनवादी बनाओ कृपा करो तार सही प्यारे मेरे झंडा का नाम चेता नानक नाम चढ़दी कला तेरे पर। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोहरा अज्ञा भई अकाल की तभी चलायो सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे
ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮਹਿਨ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਗੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ ਖਾਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੇ ਬਜੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ ਪਾ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਏ ਉਤਾਰਨ ਹਾ ਖੰਡਾ

आई हमरा परम गया पाओ भागा जब राम नाम चित लागा रहाओ बाजीगर डंक बजाई सब खलक तमासे आई बाजीगर स्वांग सकेला अपने रंग रवै अकेला कथनी कह भरम न जाई सब कथ कथ रही लुकाई जाको गुरमुख आप बुझाई ताके हृदय रहा समाई गुर किंचित कृपा कीनी सब तन मन देह हर लीनी।

अब क्या कथिय ज्ञाना, अब क्या कथिय ज्ञान बिचारा, निज निरखत गत व्यवहारा, रहाउ कास कुंकम चंदन गारिया, बिन नैनो जगत निहारिया, पूत पिता एक जाया, बिन ठाहर नगर बसाया, जाचक जन दाता पाया, सो दिया न जाई खाया।

रहाउ, अंधियारे दीपक चाहिए, एक बस्त अगोचर लहिए, बस्त अगोचर पाई, घट दीपक रहा समाई, कह कबीर अब जानिया, जब जानिया तो मन मानिया, मन माने लोग ना पतीजे, ना पतीजे तो क्या कीजे, हृदय कपट मुख ज्ञानी, झूठे कहां बिलो वसपानी, काया मांजस कौन गुना, जौ घट पीतर है मलना रहाओ, लौकी अठसठ तीरथ नाई।

किछ जोग प्राप्त गनिया रहाओ गुर दिखलाई मोरी जित मिर्ग पड़त है चोरी मूंद लिए दरवाजे बाजी अले अनहद बाजे कुम

पाओ घीओ संग लूना अद सेर मांगो दाले मोका दोनों वक्त जिवाले खाट मांगो चौपाई सिरहाना अवर तुलाई ऊपर को मांगो खींदा तेरी भगत करे।

जीवा, जह चिल मिलकार दिसंता, तह अनहद शब्द बजंता, ज्योति ज्योत समानी, मैं गुर प्रसादी जानी, रतन कमल कोठरी, चमकार भी जल तही, नेरे नाही दूर।

अब कछ मर्म जनाया, अनिक कटक जैसे भूल परे, अब कहते कहन न आया। सर्वे एक अनेक स्वामी, सब घट भुग वै सोई, कह रविदास हाथ पै नीरै, सहजे हुए सोई।

खंड खंड कर भोजन कीनो, तौ न बिसर्यो पानी। आपन बापै नाही किसी को, पावन को हर राजा। मोह पटल सब जग

रहाओ। माथे पीर शरीर जलन है, करक करे जे माही, ऐसी बेदन उपज खरी पही, वाका औखद नाही। हर का नाम अमृत जल निर्मल, इहो औखद जग सारा, गुर प्रसाद कह जन भीखन,

अनिक जतन कर हृदय राखिया, रतन न छपै छपाया, हर गुण कहते कहन न जाई, जैसे गूंगे की मिठाई रहाओ, रसना रमत सुनत सुख श्रवणा, चित चेते सुख होई।

नाम खसुम का चित न किया, कपटी कपट कमाना जम द्वार जा पकड़ चलाया, ता चलता पछताना। जब लग दुनिया रही है नानक किछ सुन।

चोर सियाणा, खोटे का मुल एक दुगाना, जे साथ रखिए दीजे रलाए, जा पर खिए खोटा हो जाए।

मुसलमान सोई मलखो वै पढ़िया बूझै सो परवान जिस सिर दरगह का निशान। तनासरी महला पहला घर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। काल नाही जोग नाही नाही सत का ढब था नष्ट जग भ्रष्ट होए।

पावै, बिन सतगुर सब मुई बिल लाई, अन दिन दाज है शांत न पाए। सतगुर मिलै सब तृष्ण बुझाई, नानक नाम शांत सुख पाए। तनासरी महला तीजा, सदा धन अंतर नाम संभाली, जी जंत जिन्हें प्रतपाले, मुक्त पदार्थ

शोभन्ति अशोभन्ति जल जोगन्ति बहुपात बचा सत्वर मेरा सदा दयालु मोहे दिन को राख लिया काटिया रोग महासुख पाया हर अमृत मुख नाम दिया मन मेरी गहो हर नाम का ओला तुझे माला गए ताता चला ए सब तब जिन्हें शरण की तिहन जिन्हों की विचार दर्शारिन के पाई उस महापुरुष दे नाल जुड़िया रहे जिस महापुरुष की कृपा सदका सदा रहे निर्मल सी काया काल ना कहूं व्याप है उस महापुरुष के चरणा नाल जुड़े रहिए ताकि साडा जीवन सुख दे नाल उद्दित होए सो इनिक सेवा प्रवान करनी हुई अपना चुका दिखी मैं आओ अगले प्रोग्राम सरुण करिए सत्कार योग ज्ञानी वरिंद्र पाल सिंह जी उन्हां पासों अज दे जिहड़े हम चल रही गुरबाणी दे विचार ओ सरुण करिए गुरु इतिहासिक इतिहास सरुण करिए दसलो फतेह प्रवान करो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

कि ऐसे राग हैं जिन्हें गा के सुन के जिन्हें दे अंदर राग का बीज है एक मस्ती छा जाती है क्योंकि राग परमेश्वर ना मिलाप करता है। इतिहास है कि गुरु नानक सच्चे पातशाह ने कोई समाधि नहीं लाई, कोई तपस्या नहीं की थी। सतगुरु जी आप वचन करते हैं ना, मैं रब नू गा के पाया है। बड़ा ईजी तरीका रागा में कोई राग गुरु नानक देव सच्चे पातशाह ने लेके आए। जदों संसार बनया है गुरबाणी भी सी राग भी सी, लेकिन बाणी नू रागा में किसी ने नहीं सिखाया। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने बख्शिश की थी ये रागा दी, और रागा में गा के तो परमेश्वर जरा है। हालांकि आप नारायण है वो कलाकार जगमह पर रहे हो, लेकिन याद इतिहास करता है गुरु नानक सच्चे पातशाह जो गाँवे सन भाई मरदाना साहब रबाब का साथ देते सन, तो सारा कुछ ठहर जाता है, रुक जाता है। ऐसी आवाज रस वाली और ऐसा कीर्तन, और ये भी वही रीता है, कोई असी नहीं त्याग की। सीना बसीना चली आई हैं सैकड़े साल पुरानी, जिवें गुरु तेग बहादुर जी पातशाह का शब्द है, रे मन कौन गत हुए है तेरी। सतगुरु सच्चे पातशाह ने आप गायन की है, और जो बिहागड़े भी गायन की है वो भी पंजे पातशाह ने आप कृपा की है। साढ़े गुरु साहब गुरु जन उस्ताद कहते सन, मत समझना कि असी बनाइया रीता, मैं अपने गुरु को करद एक गुरु साहब तक कड़ी पहुंचती है कि वो रीता। सो आओ कुछ मिनट का समा लवेंगे आप जी का।

तही प्रकाश हमारा पयो, पटना शहर बिखै पौलयो। तन तन साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज साहिब कमाल, जिन्हों का प्रकाश पुरब सारे संसार दे विच बड़ी श्रद्धा भावना नाल मनाया जा रहा है, मना रहे हैं। कलगीधर पिता जी जदों साहिब जी का आना पटना की धरती ते साहिब जी का प्रकाश होया, ते कहिंदे ने पीर भीखण साहिब जिहड़ा अंबाले के नजदीक बसदा है, अज सिजदा चढ़दे पासे नूं कर रहा है। नाल दे संगी साथी हैरान हन, अज पीर जी नूं की हो गया है। आपां वेंदे हां क्योंकि इह लहिंदे पासे नूं सिजदा करदे हन, पर अज पीर भीखण साहिब बार बार सिजदा कर रहा है। जदों नाल दे संगी साथियों ने पूछया, पीर जी की गल, ठीक हो, अज आप जी चढ़दे पासे वल सिजदा कर रहे हो? कहंदे ने जिसनू मैं सिजदा कर रहा हां, इस दुनिया का मालक, वो अज पटने की धरती ते उसने आना किया है। कोई बंदगी वाली रूह, जुड़ी हुई रूह, जिसनू पता है, जिदे मन विच तरला है कि मैं उस परिपूर्ण परमेश्वर प्यारे नू मिलना है। बंदगी तां आपां सारे करदे हां, पर बंदगी इहो जी होवे जिदे नाल पता लग जाए कि मेरा मालक किथे है, नेड़ा है दूर ना जाने, नित सारे संभाले, नेड़ा है ना ही दूर। जो इहो जी बख्शिश हो जाए, पीर भीखण साहिब कहिंदे ने 3 महीने तकरीबन लगे ने तुर पए, उस वक्त इतने साधन नहीं सन, तुर के लोकी यात्रा करया करदे सन, तुर पए, तुरे जा रहे हन उस मालक दे कलगीधर पिता जी दे गुण गाउन दे। जदों उत्थे पहुंचे, दर्शनां दी इजाजत मंगी, ते नाल कहिंदे ने 2 कुजियां विच परखण लई वी कलगीधर पिता जी वल हथ वधाए, ते दोवें कुजियां ते साहिब जी ने हथ रखना कीता। कहे मैं सारे ए अवल अल्लह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन पले को मंदी, ऐसे सतगुरु दीन दयाल सतगुरु। कलगीधर पिता जी बाल अवस्था विच उन्होंने निर्णय किया कि असी सारे संसार दे भले लई दोस्त दोखियन पकर पछारो, हमरे सब बैरियन संघारो। जिहड़ी बाणी लिखी है उसते नितरे ने दुष्ट दोखियां दा खात्मा कीता, ते बाए गही की लाज अस गोबिंद दास तुहार, साड़ी रखिया साड़ी लाज रखी, हिंदुस्तान की लाज रखी, भावे अपना सारा ही परिवार कुर्बान कर दिता। दीनन की प्रतपाल करे नित संत उबार गनीमन गारे, दीन आख दिन जिदा कोई आसरा ना हो, साहिब नितानिया का तान आए ना जाई थिर सदा, गुरसबदी सच जान। कलगीधर पिता जी ने साडे लई, साडे धर्म दे लई
ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤ।